0: वशिष्यति ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वपापहरं दिव्यं गांगेयं निर्मलं जलं आचमन्यं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरं ओम श्री गंगा आचमन्यं समर्पयामि ओम वनस्पतिर सुभूतो गंधा जो गंधरुत्तमा आग्रिय सर्वदेवानां धूपोयं प्रति क्रियताम
1: Let us all lift our hands and receive blessings. Om Namah

परमात्मनः ब्रह्म वि ब्रह्मात्मनो ब्रह्मनाउतम ब्रह्मेवति नगन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमादिनाम् अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आप लोग बोलिए ओम, प्लीज से ओम। श्री कृष्ण अर्पणम्। प्रेम से बोले श्री वृंदावन।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: रियली
0: राइट राइट

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह क्यूट,
0: राइट। मैं

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No. Anthony Gonsalves.
3: Oh, yeah!

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Vishwa Patrika
2: World Magazine
3: Pure Energy
1: Filling that void on your drive time Presenting the perfect combination that you so need at this time of the day
2: Thank you
1: Good information from agriculture to AI A journey around the globe of progressive music
4: I love you
1: And to be in the company of the most beautiful people on the planet.
2: Vishwa Patrika is your checkpoint.
1: Creating that mode of togetherness, Vishwa Patrika with me, Keshav Maharaj. Mondays and Thursdays, 4:10 to 5 p.m. on the official voice of the Hindu community in Trinidad and Tobago. Radio Jagriti 102.7 FM, a new awakening. Join me, won't you? Sitaram.

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति.
1: A major step towards a more